केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दैरशा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहू सो तुमते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सतर हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे पश्चा श्री अस्तोज जो करियो रक्षा राख लियो मोय राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुरदास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दें जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तेसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कण को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते उंचरे स्थूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाबुद करख करा कर तारा प्रजा तर तब देह अपारा जाबा करख करत हूं कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे तनरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जा को भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा
ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਵੈ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਪਿਓ ਸ਼ੰਕਰੇ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਚੰਬਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੇਖੋ ਬਾਰ ਸੇਖ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਗਤ ਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਵਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਿਆਏ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਏ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹਾਰੇ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸ਼ ਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਾਤੇਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮੇਕ ਨ ਜਾਣਿਓ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया शब्दो ता गावो हरि केरा। मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सा विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला सुमरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरै। घर तां तेरै सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा शिव सला तेरी। नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां इह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तां सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे।

हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरध पछाण हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग माण साचा साहिब साध मेहरवान बंद पाया मेरा सतगुर पूरै होई सर्ब कल्याण रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजिया दित्ता पैनण खाण अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुरबान जियो पाए पिंड जिन साजिया दित्ता पैनण खाण अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुरबान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुटान कुटान शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु का सतगुरां ने बख्शिश की है शामा वेले दे दीवान सजे पावन बाणी दे कीर्तन सोदर दे बाणी दे नाल आप संगत ने साझ बनाई है गुरु चरणा विच अरदास उपरंत पावन मुखवाक आप जी ने सरवण किया है। हुण कड़ा प्रसाद दीआं देगां दे वरतारे हो रहे ने। अज तीन दो नगरां वालों तो एक सेवक परिवार वालों श्री अखंड पाठ साहब जिहड़े ने वह गुरुद्वारा साहब विखे प्रारंभ होए ने जिन्हां दे भोग एतवार नूं पैणगे। सो आप सारियां संगतां नूं बेनती है भी आप जी ने तिन्ने दिन हाजरियां भर के सेवावां करके बाणी सरवण करके लाहे प्राप्त करने तो आओ साध संगत समा है गुरबाणी के कीर्तन का। सत्कारयोग भाई जसविंदर सिंह का जथा आप जी ने रब्बी बाणी के कीर्तन सरवण करावेगा। बड़े प्यार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

उन हर पै क्या लीना, पर ओ काल सब जग ऊपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कौ कबीर जन पए खलासे प्रेम भगत जिह जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा, हों हर बिन और न देखा, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई, हमरा भरम गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजी गर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई, बाजी गर स्वांग सकेला, अपने रंग रवे अकेला, कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जा को गुरमुख आप बुझाई, ता के हृदय रया समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता, मिलो जग जीवन दाता, जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलो मन को माटा, ता कि हो बिलो मन हारी, क्यों मिटे गो शास तुहारी, चेरी तू राम न करस पतारा, जग जीवन प्राण आधार राओ। तेरे गल है तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो न चेतस चेरी, तू जम्बपुरी है हेरी। प्रभ करण कर मन हरी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी, चित लाई तित लागी, चेरी तैं समत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर है जानिया, मेरे गुर प्रसाद मन मानिया। जे बाज न जी आ जाई, जा मिले ता काल अगाई, सत जीवन भलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही, अब क्या कथिया ज्ञान विचार, निज निरखत गत व्यवहार राहो। कास कुंकम चंदन गारिया, बिन नैना जगत ने हारिया, पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जन दाता पाया, सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाई न बुका, यौरन पै जाना चुका, जो जीवन मरना जान, सो पंच सैल सुख मान, कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़ी है क्या गुणिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले हो सोई, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबार रहाओ। अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्ती अगोचर लइए, बस्ती अगोचर पाई, कट दीपक रहे असमाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। हिरदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी, काया मंज कौन गुणा, चौं घट पीतर है मलना। रहाओ लौकी अठ सठ तीर्थ नाई, कौरा पण तऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पव सागर तार मरारी, सोरठ एक ओंकार सत गुर प्रसाद, बहु पर पंच कर परतन लियावे, सुदारा पै अन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न की जय, अंत न मेरा तेरे जी पै लीजै। रहाओ छिन छिन तन छी

रीबाई बेटी देन ना जाई। देख बेटी रहो समाई, हमारे बेटी प्राण धारा रहाओ। बेटी प्रीत मजूरी मांगे, जो को शान शवावे हो। लोग कुटंब सबू ते तुरे, तो अपन बेटी आवे हो। ऐसो बेटी वरन न साको, सब यंत्र सब ठाई हो। गुंगे महा अमृत रस चाके, पूछे कह न जाई हो। बेटी के गुण सुन री बाई, जलद बांध त्रू था प्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी, लंक पपी खने आपे हो। सोरठ करती जा, अन बढ़िया मंदल पाचे। बिन सावन कन्नर गाचे, बादल बिन बरखा होई। जो तत् बिचार कोई, मोको मिले ओ राम स्नेही। जिह मिले देस देही रहाओ, मिल पारस कंचन होया। मुख मनशा रतन परोया, निज भाउ भया परम भाग। गुर पूछे मन पतियाग, जल पीतर कुंभ समान्या। सब रामे एक कर जान्या, गुर चेले है मन मान्या। जर नामे तत पछान्या, राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल आगम जैसे लहर, मैं उदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिया होए न तैसा रहाओ। नरपति एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कश्मर भजन आया। अनेक कटक जैसे पूल परे, अब कहते कह न आया। सर्वेक अनेक स्वामी, सब कट भुग वैसोई। कह रविदास हाथ पै नीरै, सहजी हुए सोई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने शूटन को जतन करो, हम शूटे तुम्हें आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहां करोगे ऐसी रहाओ। मीन पकड़ फांक्यो, वर काट्यो रांध कियो बोबाणी। हंड कंड कर भोजन कीनो, तऊ न बिसरियो पानी। आपन बापै नाही किसी को, भावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत ब्याप्यो, भगत नहीं संदापा। कह रविदास भगत एक बाडी, अब एका स्यों कई है। जा कारण हम तुम अराधे, सो दुख अजहू सही है। दुलब जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात बिकै। राजेंद्र समसर गृह आसन, बिन हर भगत कहो के लिख है। ना बिचार्यो राजा राम को रस, जिह रस आन रस बिसर जाही रहाओ। जाने जान पे हम बावर, सोच सोच दिवस जाही। इंद्री सबाल निबाल, विवेक बुद परमारत प्रवेश नहीं। कहियत आन आचरियत, अन कश समझ न भरे परमाया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम तेन बस जाके। चार पदार्थ यठ दसा, सिद्ध नवनिध कर तल ताके। हर हर हर न जपै रसना, यवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद बेद, चौंती से अखर माही। ब्यास विचार कयो परमारथ, राम नाम सर राही। सहज समाध उपाध रहत, पुन बड़े भोग लिव लागी। कह रविदास प्रगाश, हृदय तर जन्म मरण पै भागी।
ज्यों तुम गिरवर तो हम मोरा, ज्यों तुम चंद तो हम पए हैं चकूरा। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यों तोर कमन स्यों जोरे रहाओ। ज्यों तुम दीवरा तो हम बाती, ज्यों तुम तीर्थ तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जहां जहां जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा।

जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ, राखो कांदे ओ सारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, ए तन होए गो पसम की ढेरी, ऊचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, उच्छा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा, चमरट्टा गांठ नचन नहीं, लोग उठावे पन नहीं रहाओ, आर नहीं जी तो पाओ, नहीं रामी ठाओ रोपाओ, लोग गंट गंट खराब गूचा, हाँ बिन गंठे जाए पहुंचा, रविदास जपै राम नामा, मोहे जम स्यों नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत भीखण की, एक ओंकार सत गुर प्रसाद।

जलन है करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन भीखण पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन न छपै छपाया। हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई। रहाउ रसना रमत सुनत सुख सवना, चित चेते सुख होई को भीखण दोए नैन संतोखी, जहां देखा तहां सोई।

रहो, सास माँ सब जीव तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। सास माँ सब जीव तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर इम कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किछु पाइए, पुरब लिखे कर लेना। नाम खसम का चेतन किया, कपटी कपट कमाना। जम द्वार जम पकड़ चलाया, तां चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए।

का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हूं जो संजय करे बिहार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत जाने छट बै करवार सबको पूरा पे होवे घटना कोई आखे पत प्रवाणा पिछे पाइए ता ना।

0: तीरगत मुच पूजे आवे अस्कर जय निरासे कित फल बिके फुल बक बके कमना वे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगेया तत्तु सब को निवे आप को पर को निवे न कोई तरत राजू तो लिए निवे सुगोरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर गाए शीस निवे क्या थी है जारे देख सुते जाई महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिर पूस बगल समादंग मुख झूठ में भोखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल

जत गंडी सत वट ए उजने उजी काहत पांडे कत नाए तुटे नाम लगे नाए जले न जाए तन सुमान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मूल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्रह्म।

0: न जाए। तो तीट कालत है जब माले तान मले छा खाए, आंतर पूजा पड़े कते बांसन जम तुरका पाए, छूडी ले पखंडा नाम लिए जाए तिरंगा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास श्री विगंतन गलता, तिन कर ब्राह्मण पूरा नाद ना पियावा विसाद, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल कर आहार, सर्व धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा प्रभुर, मत्था टिका तेड धोती तो खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश धानले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा वकरा खाना, चौके ऊपर किस न जाना, देख के चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार, मत बिटै वे मत बिटै, आना साडा बिटै तन।

तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास तुमरी गत मित तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी क्यों अंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक

दया करो कश्मीरी उपावो, डुबदे पत्थर तारी, जीड़ा यगन बराबर तपे, पीतर वगै काती

सहु मीरा रंगुला रंगे सहज सुभाए कमण रंग ता चढ़ाए जा पिरक अंक सुमाए चिरी बुशुन्ने पी मिलन जो सतगुर सिवन अंतरनावनद नाम है खान खर्चन नानिकुटी हर गुण सहज रवन ना ओ जन्मे नाम रहे ना ओ दुख सहम गुरु राखे से उबरे हर सेव केल करन सजन मिले न बिछड़े जे अनदन मिले रहना इस जग मह बिल जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सुखम अगम है कित विद मिलिया जाए गुर कै शब्द भ्रम कटिय चिंत पसे मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हाओ तिनके बलिहार ने मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरबुर मान सरूप रहाय बड़ भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख जे आसे हंसले नाम लहन नाम त्यायन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन धुरम पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लयन बड़ भागी घर को जिया पाया नाम निदान गुर पूरे विखालिया प्रभ आत्म राम पछाण सबना का प्रवेक हाय दूजा वरण कोय गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म हाय ब्रह्म वसै सब थाय मंदा किसनु आखिए शब्द बिकुल बलाय बुरा पलहा तिचर आख दिचर है दुह माहि गुरमुखे को बुझिया एक सुमह सुमाय सेवा साम प्रभाव सिंह जो प्रपाय थाय जन नानक हर राधे आ गुर चरनी चित लाए राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा ओंकार सतगुर प्रसाद

कृपा करे ता सतगुरु मिलहे हर हर नाम त्यो रहो जी सुख दे ता तू जह अराधी दुख पी तू जयंत आई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई तनु मन काट काट सबर पी बिच अग्नि आप जलाई पक्का फेरी पानी ढोवा जो देव है सो खाई नानक गरीब ढह पया द्वारे हर मेल लेहो बड़े आई अखी काड़ उतरी।

सगल व्याध कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यो जल बिनु मीना कछु से आन पोयुक्त न मोरी के आस ठाकुर प्रभु तोरी करो बेनती संतन पासे मेल ले हो नानक अरदासी पयो कृपाल सत्संग पाया नानक तृप्तम पूराम पाया रहाउ दूजाम राग सूही महला पंजवांग करती जाय को अंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उदर हर नागर चरण कमल शरण आय नारायण दीना नाथ भक्त परायण रहाओ नाथ नाथ भक्त पाए मिटन साध संग जमदूत न भेटन जीवन रूप नूप दयाला रबन गुणा कटिय जमजाला अमृत नाम रस नित जापै रोग रूप माया न बेहपै जप गोविंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच भट बारे मन ब्रच क्रम प्रभ एक ते आए सर्व फला सोई जन पाए तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना याद मध्य अंत प्रभ सोई नानक तिस बिने वरण कोई राग सूही महला पंज अष्टपदियां करण वाहे को अंकार सतगुर प्रसाद जिन डिठिया मन रहसी आई क्यों पाई तिन संग जियो संत सज्जन मन मित्र सिलायन प्रभ स्यो रंग जियो तिन सो प्रीत न तुटी कबू न हो बै भंग जियो पार ब्रह्म प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आए मिलो संत सज्जना नाम जप हो मन मित जियो रहा उन्दे कै सुन न जानी माया मोहे अंध जियो काची दिया बिन सनी कूड़ कमावे तंद जियो नाम ते आवै हिंसे जिन चलै गुरपुरे संबंध जियो हुक्मै जुगमै आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मै परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो जिसनु कर तां बिसरै तिसै बिछोड़ा सोग जियो आपन डै प्रभाणे आंदर गै पैंदा जाए जियो एथे सुख मुख उजलाए को नाम ते आए जियो आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेवया सत पाए जियो थान तनंतर रव रहया सर्व जिया प्रतपाल जियो सच

चौथी लाभ है हर पाया प्रभ अवनासी एको अंकार सतगुर प्रसाद राग सूही शांत महला चौथा घर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभाए मिलिया सहज सुपहाए आंदन भोग भोगे सुख सोभा शब्द रह लिवलाए बढ़ पाग गुर पूरा पाया आंदन नाम तिहाए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए दंग संगत संत मिलाए हर सर निर्मल ना

गाह मैं बिनती पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर हुआ बसा कर मंगल वह रसम रसम रसाई गुरमत नानक नाम प्रगासा अदंतर रतन बिचारे गुरमुख नाम प्यारे हार नाम प्यारे जो शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलया कट चानन अखर मंदिर सोहाया तन मन अर्प सिंह अर्प नाय हर प्रभ सच पाया जो प्रभ कह सोई पर कीज नानक अंक समाया हर प्रभ कह जरचाया गुरमुख बियाहन आया गुरमुख हर पाया सतन कंत प्यारी संत जन मिल मंगल गाय हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदे मरा ना जाई राग सुही संत महला चौथा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद केरे राम गुरमुख मिल रही है करवाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई एन जपी सलाही सा शब्द लवलाई हन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रद पूजा नानक गुरुमुख एक पछाणा अवरण जाना दूजा सब मैं रब रह सो प्रभ अंतर जामी राम गुरु शब्द रवा रब रहा सो प्रभ स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कड़ कर रव्या सोई गुरमत सच पाई समाई है तिस बिना बरना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापा अहनस नाम तिहाई हे एहो जगो दुत्तर मनमुख पार ना पाई राम अंतरे होमै ममता काम क्रुज तुराई राम अंतर चतुराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावा चोटा खावा अंत गया पछताया बिन नावै को बेली नाही पुत कुटुंब सुत पाई नानक माया मुह पसारा अग सत न जाई हों पूछो अपना सतगुर दाता किन बे दुत्तर तरिये राम सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौजल तरिया गुरमुख नाम समावा पूरा पुरख पाया बडभागी सच नाम लेव लावै मत प्रगास भई मन माने राम नाम बढ़ियाई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सुहि महला चौथा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनो प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मान तन देवा सतगुर मैं मेले प्रभगुण तसे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सब असे वड भागी कर हर पाया जन नानक नाम बिगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलया हार मार्ग पंथ दसा कर आवो चरी विशुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हों तुझ तो बाजो करी उडीनिया जो जल बिन मीन मराहा बडभागी हर त्याया जन नानक नाम सुभा मन दान दिस चल चल भरमिया मन मुख भरम भुलाया नित आसा मन चित वह मन तुसना भूख लगाया अनता तन तर दबिया फिर बिख भालन गया जन नानक नाम सलाह तू बिन नावै पच पच मुया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम मान मन मारिया मेरे हृदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत विसरिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन सद हरिया बडभागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वरिया सुही संत महला चौथा मारे वैसे जन हो मैं मिथक्या जन हर पव मिल न दिती आ देह कंचन वे बनिया इन हो मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब का लखा इन मनमुख मूड सुजुतिया जन नानक गुरमुख बुरे गुरु शब्दी हो मैं छुट्टिया बस आने बहु जिस मन कहो मन बासे जो नित पाउंदे आ जो दे दुख रैन वे वेहानिया नित आस आस कर दिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौंदे आ जन नानक प्रभ देहो मती छड आसा नित सुख सुंदिया सातन आसा चित करे राम राजिया हर पव सेजड़िया आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया कर कृपा लिह मिलाई मेरा मन तन पलोचा गुरमुखे राम राजिया हर सदा सिज विशाई जन नानक हर प्रभ पानिया राम राजिया मिलया सज पाई एक सिज हर प्रभु राम राजिया गुर दसे हर मेले मैं अंत मन तन प्रेम बैराग हे राम राजे आ गुर मेले कृपा करे
ਹਉ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਕੁਲ ਕਮਾਇਆ ਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਦੇਈ ਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਜੀਉ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਹਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮੇਲੇਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕੂੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਤੂੰ ਕਾਂਏ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨਾ ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਲਾਇਓ ਕਸੁੰਮ ਬਰੰਗਾਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਭੁੱਲੋ ਅੱਡ ਲਹਿ ਨਾ ਮੁੱਲੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਜੀਠਾ ਹਾਥੀ ਵੇ ਲਾਲਾ ਅਤ ਗੁਲਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੇ ਮਗਨ ਥੀ ਰਹਿਆ ਸੂਠ ਸੰਗ ਲਪਟਾਨਾ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਰਾਖ ਲਾਜ ਭਗਤਾਨਾ ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਸੇਵ ਠਾਕੁਰ ਨਾਥ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਸਜਾਨਾ ਨਿਚਲ ਹੱਬ ਵੈਸੀ ਸੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਈਏ ਭਾਗੀ ਸੁਣ ਬੈ ਰਾਗੀ ਹੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੇ ਸੰਕਟ

आनंदन मन तन पीवा हर आपे ले मिलाय, क्यों बे छोड़ा थी भई बलराम जियो। जिसनो तेरी टेक सो सदा साध जी भाई बलराम जियो। जे तेरी टेक तुझे ते पाई साजे सृजन हारा, जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी। सफल दर्स भेट अगर पूरा नानक साधु बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो। सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया। शब्द विसराए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजे वजे अनहदा चुनकारे। सुन पै विनासे सगल नानक प्रपुर करन हारे। उपजे तत् ज्ञान सोहरे एक पैये कर बलराम जियो। ब्रह्म ब्रह्म मिलिया भोजन साकर पन कर बलराम जियो। बिसम पेख बिसम सुनिए बिसम आद नदरी आया। जल तल मही जल पूरन स्वामी कट कट रहा समाया। जिस ते उपजे तिसमाहे समाया, कीमत कहन न जाए जिसके चलतन जाही लख नेह। नानक तिस तिहाए राग सूही संत महला पंजवा। घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मी जीव पिंड प्रभ आज्ञा अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे सगर रैस उपजय मन कन्हा मन तन निर्मल ना देखन दर्शन नाम प्रभ का मुख पना हुए रेन साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा विनवंत नानक आ दया तारु सदा हर गुण गावा गुर मिले सागर तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण त्याय सब फल पाए मिटे अवन जाना पाए भगत सो पाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख्या पार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनमंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूरन संत जना के कामा।

कर हमें रम्मत साई, कृपा कीजे सावत दीजे आठ पर तो तिहाई, गर्भ न कीजे रेन हो बीजे तांगत जीरे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कन चेरी राम। तुम गौहर हत गहर गंभीरा, तुम फिर हम बहिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ उच्चे हो इतने के लौहरिया राम। हूँ केश नाही एको तू है आपे आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा, सर्व रंग रस माना, चरणे सरणी दस दसी मन मौला तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व सवाना आपन पवन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी तू जा नाही जाना राम, सुई जाना सुई पछाणा जाकु नदर सुरंदे, मन भूली बहुती राई फाती माया फंदे, ठाकुर पाणी सागुन मंती तिन ही सब रंग माना, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माना, हो बनी वारी बन्या कोली बन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम, हो बल जाई लख लख लख बरिया जन भ्राम, परदा खोला राम, मिटे अंधारे तजे विकारे, ठाकुर सुमन माना, प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना पई अमोली, भरा तोली जुगत जुगत दर खोला, कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सुहि महला पंजवा, साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम, मात पिता भाई सुत बंदप, जी प्राण मन पहना राम, जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्ब गुणा पर पूरे, अंतर जामी सो प्रभ मेरा, सर्ब रहा पर पूरे, ताकि सरन सर्व सुख पाए, हुए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहारे, नानक सद कुरबाना, ऐसा गुरबट भगी पाइये, जित मिले प्रभ जाप राम, जन्म जन्म के किलविख तुतरे, हर तन धूड़ी नित नप राम, हर धूड़ी नाइये प्रभु ते आइये, बौड़ जोन ना आइये, गुर चरणी लागे ब्रह्म पो भगहे, मन चिंद आ फल पाइय, हों के हर गुण गा ने हर गुण नित गाए, नाम ते आए फिर सोग नाही संताप, नानक सो प्राप जी का दाता पूरा जिस पर तप, हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवा साए, राम संत चरण गुर सेवा लागे, तिन्हीं परम पद पाए राम, परम पद पाया आप मिटाया, हर पूरन कृपा थारी, सफल जन्म हुआ पो पागा, हर पेटिया एक मुरारी, जिसका साथ नहीं मेल लिया, ज्योति जुत समाया, नानक नाम निरंजन जपिय है, मेरे साथ गुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित जन हर जनो पुन्नी इच्छ सबाई, राम रंग रते अपने स्वामी सेती ही।

आनंद के निरे गुर चरणी मन लाए, पूर रहा घट घट वनासी थान तनंतर साई को नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी मन लाई। सुहि महला पंजीवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखा दर्श तेरा राम, लाख जेवा देह मेरे प्यारे, मुख हर आराध्य मेरा राम, हर आराध्य जम पंथ साधे, पन दुख विराम व्यापक कोई, जल थल माही अल पूर्ण स्वामी, जत देखा तत सोई, परम मोह विकार नाठे, प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजे, नेत्र देखा दर्श तेरा, कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिया अविनासी राम, सुन सुन हे मन निर्मल होवै, कटिए काल की फांसी राम, कटिए जम फांसी सिमर अविनासी, सगल मंगल सो ज्ञाना, हरा जप जपिए दिन राती, लागे सहज थेहना, कलमल दुख दा जारे, प्रभु चितारे, मन की दुरमत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा की जय, हर गुण सुनिया अविनासी, करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे, चरण चला प्रभ मार्ग राम, पाव सागर नाव हर सेवा, जो चढ़े तिस तार ग्राम, पवजल तिरया हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे, महा विकार पये सुख उपज, बाजे अनहद तूरे, मन बांछत पाए पाए सगले इस कुदरत कीम अपार, कहो नानक प्रभ कृपा की जय, मन सदा चला तिर मार्ग, एहो बर एह बटियाई, एह तन हुए बट भागा राम, एहो रंग

सो जाना सोई आपे सिष्ट पाई न आपे फिर गोई जुग चारे सब भगत के किन कीमत होई। सतगुर एक विखाले आ मन तन सुख होई गुरमुख सलाह ही है करता करे सो होई। सलोक महला दूजा जिन्हां पौत नाहे पौ सुख होई गुरमुख नाम समलिया। गुरमुख सत सलाही है करता करे सो होई। सलोक महला दूजा जिन्ना पौ तिन नाहे पौ मुच पौ निपे व्या नानक हो पटंतर राहा। तित दी बाण गया महला दूजा तुरदे को तुरदा मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवता मिले मुए को मुआ। नानक सो सलाही जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सचे गुर शब्दी विच गब्द विचारी। होमै मार मन निर्मला हर नाम उतारी कोठे मंडप माड़िया लग पे गवारी। जिन किए तिस न जाननी मन मुख गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचया क्या जंत बचारी। सलोक महला तीजा कामन तौ सिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत सीजै कंत ना आवई। एवं बिरथा जाए कामन पिर मन मान्या तो बनया सिंगार। किया तो प्रवान है जा सो तरे प्यार पौ सिंगार तमुल रस भोजन भाव करे। तान मन सौंप कंत को तो नानक भो करे। महला तीजा काजल फूल तंबुल रासले तनकिया सिंगार सेज कंत न आयो एह वह पया विकार। महला दूजा तान फिर एना आखियन बहने कठे होए एक जोत दोए मूर्ति ही तन फिर कही है सोए। पौड़ी पैबिन भगत ना हो नाम ना लगे प्यार।

अजंत नाम बस्या मन आहाय होम माया शब्द जलाय दर सच सहगुर ते शुभ पाय जगदीश सेवो मैं अवरना कजा अनदिन आनंद होवै मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवज रहा मन की प्रतीत मन ते पाई गुर पूरे ते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसार वेखे बौड़ ना मरे ना जम पिख कर ही मैं सब कोट निधान सतगुर दिखाई गया अभिमान सद ही लाग सहज त्यान अन दिन गावै एको नाम इस युग में वडियाई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई ही सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई पूरे पागुर पूरा पाया आंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्दात बीठा लाया त्रै नानक दर्शन बुझे मन तन सुख पाया राग बिलावल महला चौथा कर तीजा इको अंकर सतगुर प्रसाद उत्तम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना जो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों बाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना हर हव माया मगन भ्रमत है प्राणी रख लेव जन अपना जो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सुरना कवन कवन की गत मेथ कही है हर किए पत तपवना ओह टोरै टोर हाथ चम चमरे हर उधरो परयो सरना हर दीन दयाल भगत पव धारण हम राखी पापी राख पपना हर दसन दास दासम करियो जिस नानक दास दसना बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मत्ती शरणागत पुरखे जन्मा कर कृपा रख लेव मेरे ठाकुर हम पाथर हीन करमा मेरे मान भज राम नामा रामा गुरमत हर हरस पाय होर त्यागो नेफल कामा।

ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा, नामहीन त्रिग जीवते हे तिन वड दुख सहमा। फिर जुण पवाई है मंद भागी मूड अकर्मा, हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड करमा। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा, बला बल महला चौथा। हमरा चित लुभत है मोह बिखिया, बहुत दुरमत मैल भरा। तुमरी सेवा कर न सकै प्रभ हम, क्यों कर मुग्ध तरा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जन ऊपर कृपा प्रभ धारी। मिल सतगुर पार परा रहा, हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी। हर देहो मत्ती जास कराहा, तुमरे संग लगे से उधरे। जो संग काष्ट लोह तरा, साकत नर ऊची मत मध्यम। जिन हर हर सेव ना करा, ते नर पागहीन दुचारे। वे जन्म हुए फिर मरा, जिनको तुम हर मेलो स्वामी। ते नाए संतोख गुर सरा, दुर्मत मैल गई हर पजिया। सन नानक पार परा, बिलावल महला चौथा। आबो संत मिल मिर पाई, मिल हर हर कथा करो। हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए। मिल संगत पार परो रहाओ, काया नगर मैं राम रस उत्तम। क्यों पाइयो उपदेश जन करो, सतगुर सेव सफल हर दर्शन। मिल अमृत हर रस पियो, हर हर नाम अमृत हर मीठा। हर संतो चख दिखो, गुरमत हर रस मीठा लागा। तिन बिसरे सब बिख रसो, बिलावल हर नाम नाम रस राम रसायन। हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए। गुरमत नानक हर भजो, बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जप, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो, नित सेवो दिन सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो। हर बोलो गुरमत बैनी रहाव, अनको पाम चित्त भी है बहु तेरे। सा होवै जे बात होवैनी, अपना पला सब कोई बंश। सो करह जे मेरे चित ना चितैनी, मन की मत त्यागो हर जन। एह बात कठैनी, अनदिन हर हर नाम थिहावो। गुर सतगुर की मत लैनी, मत सुमत तेरे बस स्वामी। आम जा

हाँ, आनंद मूल त्यायो पुरखोत्तम, आनंदन आनंद आनंदे सा धर्मराय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे, जप मन हर हर नाम गोबिंदे, बड़ भागी गुर सतगुर पाया, गुर गाए परमानंद रहाव, साकत मूड माया के बद विच माया फिर फिरंदे, तिसना जलत किरत के बांधे, जो तेली बलद पवंदे, गुरमुख सेव लगे से उधरे, बड़ भागी सेव करन दे, जिन हर जपया तिन फल पाया, सब टूटे माया फंदे, आपे ठाकुर आपे सेवक, आपे आप गोबिंदे, सजन नानक आपे आप सब वरता, जो राखा तिवर हंदे, एको अहंकार सतगुर प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल कर तेरवा, बोलो भैया राम नाम, पतत पावनो हर संत भगत तारनो, हर भरपुर रहिया जल थले राम नाम, नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाउ, हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख बिसारण हारा, गुर भेटिया है मुक्त दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस विनासा, विच आसा फिर निरासी, सो जान मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लवनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौपदी कर फैला एको ओंकार, सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभा बनासी तोहे, कर कृपा मह मार्ग पावो, सा संगत के अंचल लावो, क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुर बोहित पावै पार रहाओ, पवन चुलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से, हर के सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर्पयंगा, हो मैं पजय दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नी पावै, जब हुए कृपाल ता गुरु मिलावै, हो फिर उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर जिस मैं लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पई निहाल, जिन चाखे तिसाया साध, जो गूंगा मन में बिस्माद, आनंद रूप सब नदरी आया, जिन नानक हर गुनाख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, बिघन न जाप लागे जाप अलख भेव, तरत पुनीत भई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ध्याए राह, सभनी थाई रव्या आप, आजुगत जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्भय होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे, ना पार ब्रह्म प्रभ भये रखवाले, जिथे किथे देसा नाले, नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा, सोखण दान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी शरण आई, कर कृपा हर चरण त्याई, दया करो बसो मन आए, मन निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभ चित आवत त कैसी भीड़, हर सेवक नाही जाम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाकर संग सदा प्रभ बसै, प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम होवत तन सार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, सब बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब निर्मल रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन के कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा जानिए।

शब्द चीन फिर लगी न पीर, आवे न जाई ना दुख पाई, ना मेरा ते सहज समाई, नानक गुरमुख विखे हदूर, मेरा प्रभ सदरिया भरपूर, एक सेवक एक परम पलाए, आपे करे हरे आप कराए, एको वर्ती अवर न कोए, मन रोस की जे जे दूजा होए, सतगुर सेवे करनी सार, दर साची साची विचार, थित्ती बार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, थित्ती बार सब आवे जाए, गुर शब्द नेचल सदा सत समाए, थित्ती बार ता सच राते, बिन नावे सब परमे काचे, मनमुख मरे मन बिकती जाए, एक न चेते दूजे लभाए, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दे क्यों पाए अंपार, आप उपाय पावन हार, आप की तोन कुर विचार, बहुते भेख करे भेख तारी, पापा परमे काची सारी, एथे सुख न आगे होए, मनमुख मुए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चकाए, करे अंदर सच मैल पाए, आपे पूरा करे सोए, ए थित्ती वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंध गुबार, थित्ती वार से मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूजे सो जी पाए, कत नाम सदारिया समाए। बिलावल महला पहला, संत दखनी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मुदन वेलड़िए गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लेवलाई राम, लेवलाए हर सियो रही गोयल, सहज शब्द सिंगारिया, कर जोड़ गुर पै कर बनंती, मिलो सच प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुदन वेल सुंदर, देख पिर सदारिया, सच नवेलड़िए जो बनवाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सहनाली राम, नहीं अपने संग सासी, मैं भगत हर की पावै, अगाध बोध अकथ कथिए, सहज प्रभ गुण गावै, राम नाम रसाल रसिया, रवे सच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया, नानका विचारिया, श्री तर मोहड़ी पिर संग सूती राम, गुर के पाए चलो सा संगूती राम, तन सा संगूती हर संग सूती, संग सखी सहेलियां, एक पाए एक मन ना वसिया, सतगुर हम मेलिया, दिन रैन घड़ी ना चसा विसरे, सास सास निरंजनो, शब्द जोत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो, जोत सुबाइडिए त्रै पवन सारे राम, कट कट रवरे अलाखे अपारे राम, अलाखे अपार अपार साचा, आप मार मिलाइए, हमें ममता लोभ जालो, शब्द मैल चकाइए, दर जाए दर्शन करी पानी, तार तार नहारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति, नानका अवतारिया, बिलावल महला पहला, मैं मन चाओ कना साच विगासी राम, मोही प्रेम प्रिय प्रवे बनासी राम, अब गितो हर नाथ नाते तिस पावे सोतिये, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ध्यान पूजा हर नाम यंत्र वस रहे, भेख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे, पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नाम हर नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड कपट सुभाओ दूजा चाकरी लुकानिया, मैं नाम हर का हर कंठे साच शब्द निशानिया, कर जोड़ नानक साध मांगे नदर कर तो पानिया, साग सोए लड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मनियाड़ी कत कहानी राम, कत कहानी पद नरबानी, को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवावे, त्रै पवन सोई सूजे, रहे अतीत अपरंपर राता, साच मन गुण सारिया, ओ पूर रिया सर बठाई, नानका उरतारिया, महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रसी सी जस देही राम, मन मार रीजे शब्द सीजे, त्रै लोक नाथ पछाने, मन डीग डोल ना जाए कते, अपना पिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं तान तकिया तेरो, साच सूचा सदा नानक, गुर शब्द चगर न बेरो,
संत बिलावल महला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जी आया मन सुख सुमाना राम गुर तूठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम बट भागिया सुहागनी हर मस्त खाना राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम नमान्या हर मान है हर प्रभ हर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम मेरे हर प्रभावे सो करे हर रंग हर आपे राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापे राम मानस जन्म हर पाइये हर राम नवेरा राम गुरमुख मिल सुहागनी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म न पाया तिन भागम तेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ दड़ाया मन तन रंग पीना राम भगत विशाल नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम न जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिलावल महला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड लो मन वसे वट भाग गुर पूरे विखालिया नानक हर लिव लाग संत मेरा हर प्रभ राम ने आया हमें भिक्षा की राम गुरमते आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वट पागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम बधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटाई राम जन नानक नाम आधार हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जान हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलकमसाई राम गुरपुरे हर मेलिया रस कसाई राम जन नानक नाम विगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुगद मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुर छवाच है जिन होमे मेरी राम जिन बट पागिया बट पाग है हर हर उतारी राम जन नानक नाम सलाए तू नामे बलिहारी राम बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे पागे का मिल गए पूरन पत्ते सहज समाई गोविंद पाइये दियो सखिए मोह मत्ते दिन रहन ठांडी करो सेवा प्रभ कवन जुगति पाया बिन मंत नानक करो कृपा लियो मोह लड़ लाया पया समाहड़ा हर वतन साहा राम खोजी खोज लदार संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया तारे कथे अकथ विचारो एक चित एक मन ते आए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ पै कर बनंती मिले हर जस लहा बिनवंत नानक दास तीरा मेरा प्रभ गम्य था साहा टल गया पूरन संजोगी राम सुखम समूह पया गया विजोगो राम मिल संत आए प्रभु ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्र होए सहज टोए मन प्रीत उपजी मांजिया मिल ज्योति ज्योत ओ पोती हर नाम सब रस पोगो बिनवंत नानक सब संत मेले प्रभ करन करन जोगो पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्रभ कर आए डागुर चरनी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विशुनिया आनंद आंदन वजे वाजे हो मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरन स्वामी संत संग लिव लागी बिलावल महला पंजवा भाग सुलखन हर कंत हमारा राम अनज बचित्रा तिन दरबारा राम आनंद आंदन वजे वाजे दिन सरैन्यो माहा तै रोग सोगना दुख व्यापे जन मरना ताहा रिद सिद्ध सुधार से अमृत भगत परे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण आधारा सुन सखी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमक पलक ना त्यागी है
कह कंठ लाइए नै लजाइए चरण रज मन पागिए भगत ठगौरी पाए मोह नंद कतू ना तावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे बिस्मन बिस्म भई भेख गुण बनासी राम कर मैं पजा कर गै पूजा गई कट जमकी फासी राम गै पूजा लीनी दास कीनी अंकर दूत जनाया मलन मोबी कार नाटे दिवस निर्मल आया देश तारी मन प्यारी मां दुरमत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रमिले अबनासी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योतरली संपूर्ण थिया राम ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक बखानिए आत्म पसारा करन हारा प्रबिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस्याओ सखी असी पिरका मंगल गावे तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक नरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त विखंडनो होए दास दासी ताजी उदासी बौड़ बिदीना तामा नानक प्यंपे करो कृपा ताम मंगल गामा अमृत पे का नाम है अंदले टोहनी होए जोए बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनेक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मने लागे नाम मन लै ना आवे ग्रह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोनी नानक प्यंपे दया तारो मैं नाम अंधले टोनी वो अनाथ प्रिय नाथ जो जानो त्यों रखो चतराई मोहे नाये रिजावो कै मुखो न चतर सुगर सजान बेती मोह निर्गुण गुण नाही न रूप धूप न नैन बंके जय पावे तय रख तुही जय जय जम्पे सगल को जा को कुरनार पत खत खिन रखो नानक प्यंपे सेव सेवक ज्यो जानो त्यों मोह रखो मोह मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरे मोह चातरक तुम बूंद तृप्तो मुख परे हरे प्यास मेरी जी ही प्राण पते लाडी ले लाड लडाए सा मैं किल मिल हमारी को होए गते चीत चितवो मिटे अंधारे जो आस चकवी दिन चरे नानक प्यंपे प्रे संग मेली मछली नीर ना विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोए बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुख गामी नंद मंगल रसकना नवल नवता नाहु बाला कवन रसना गुण बना मेरी शेज सोई देख मोई सगल संसार दुख हरा नानक प्यंपे मेरी आस पूरी मिले स्वामी परंपरा बिलावल महला पंजवा संत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर शांत दयाल प्रभ सर्व सुखानित पियो सुख सागर पेटिया नानक सुखी होते जियो संत सुख सागर प्रपाइए जब होए पागो राम मानन मान उड़ाइए अचरनी लागो राम छोड़ सियान बचातरी दुर्मत मत त्यागो राम नानक पौ सरनाई राम राय थिर होए सुहागो राम जो प्रभ तज कत लागिए जिस बिन मर जाइए राम लाज नाव ज्ञान मती दुर्जन बिरबाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे को कत ठहराइए राम नानक भगत पहो कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल न उचरे बल गईये दो चारण रसना राम प्रभक्त विशाल न सेवी काया कागर रसना राम परम मोहि दुख न जानी कोट कोट बसना राम नानक बिन हर अवर के जाना बिस्टा किरम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे मिल बिरागन राम चंदन चीर सुगंध रसाओ में बिख त्यागन राम ईत उत न डोलिए सेवा जागन राम नानक जिन पर पाया अपना सा टल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खोजो बट पागियो
मिल साधु संगी राम, गुण गोविंद सदा गाइये पार ब्रह्म के रंगे राम, सो प्रभु सदी सेविये पाइये फल मंगे राम, नानक प्रभु शरणागति जपनं तरंगे राम, एक तिल प्रभु न विसरे जिन सब किश दीना राम, वडभागी मेला वडा गुरमुख परचीना राम, बाह पकड़ तम काढ़िया कर अपना लीना राम, नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम, सिमर सिमंदर ऐने पै पार गरामी राम, गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम, नानक उदरे जापरे सब का स्वामी राम, रस पिनड़े अपने राम संगे सह लोयन नीके राम, प्रभ के पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम, अमृत रस हर पाया भिख्या रस पीके राम, नानक जल जले समाया ज्योति ज्योत मीके राम। बिलावल की वार महला चौथा, एक अहंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा, हर उत्तम का हर प्रभ गाव्या हर नाद बिलावल राग, उपदेश गुरु सन मन्या तुर मस्तक पूरा पाग, सब दिन सरैन गुण उचरे हर हर हर उर्लाग, सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन चे राग, गुरु नानक जीवे देख हर एक निमख कड़ी मुख लाग, भला महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम, राग नाद सब सोने जा लागे सहज ध्यान, राग नाद छोड़ हर कीजिए सेवगे जा दरगे पाइये मान, नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिये चूके मन अभिमान, पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया, तुद आपे आप वर्तदा सब जगत सुबाया, तुद आपे ताड़ी लाइये आपे गुण गाया, हर त्यावो भगतो दिन सरा त्यंत लय छाया, जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया, श्लोक महला तीजा दूजे पाए बलावल न होवे मनमुख थाए न पाए, पखंड भगत न होवे पार ब्रह्म न पाया जाए, मन हट कर्म कमामने थाए न कोई पाए, नानक गुरमुख आप बिचारिए विचों आप गवाए, आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए, जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाए। महला तीजा बलावल करो तुम प्यारो एक सिंह लाए, जन्म मरण दो कटिए सच्चे रहे समाए, सदा बिलावल नंद है जे चले सतगुर पाए, सत संगति बै पाओ कर सदा हर के गुण गाए, नानक जे जन सोने ये गुरमुख मेल मलाए, पौड़ी सबना जिया विचर आप जो भगता का मित हर, सब कोई हर के वस भगता के आनंद कर, हर भगता का मेली सरबत सो निसल जन टंग तार, हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर, तू अपड़ कोई न सके सब चक चक पै चाड़, श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा जे चले सतगुर पाए, जिनके हिरदे हर वसे होमे रोग गवाए, गुण गावे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाए, इस जग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिनको नदर कर हर सच्चा जे नाम रहे लिवलाए। महला तीजा सतगुर की सेव न कीतिया शब्द न लगो पाओ, हमें रोग कमावना अत तीर्घ बैसवाओ, मन अठ कर्म कमावने फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनु आपे लय मलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पले पाए, पौड़ी सब वड्याईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याईए, जे वस्त मंगिए साई पाईए जे नाम चित लाईए, गोहेज गल जी के कीजे सतगुर पास सर्व सुख पाइए, गुर पूरा उपदेश दे सब भुख लजाइए, जिस पूर्व होवे लिखिया सु हर गुण गाइए, श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रमेल मलाए, सतगुर का दर्शन सफल है जिया को इच्छे तिहा फल पाए, गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोख हुआ सच वस्या मन आए, सच त्याय अमरा पद पाया अनद शब्द बजाए, सचो दैद पसरिया गुर के सहज सुबाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छपे न किसे दे छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाईए जा को नदर करे, मानस ते देवते पै सच्ची भगत जिस दे, होमे मार बलायन गुर के शब्द सचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वड्याई दे, पौड़ी
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਧਾਈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਨ ਉਨ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਪਾਈ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸਿਖਾਈ, ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੀ ਚੱਖ ਮਾਰੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਬਣਿਆਈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਭਾਵੇ ਸਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ, ਸਭ ਚੱਖ ਚੱਖ ਮਰੇ ਲੁਕਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤ੍ਰੇਗੇ ਆਸਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਸੁਖ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਲੇ ਜਨਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨ ਹੋਮਣੀ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਏ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਮੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਜੰਮ ਕੇ ਚੀਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਤਾ ਸਭ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮੀ ਹੀ ਜਮ ਲੱਗਦਾ ਉਭਰੇ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਤਾਂ ਤਰੇ ਜਾਂ ਛੁੱਡੇ ਹੰਕਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਾਰੇ ਨਿਰਾਸ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਗਤ ਮੈਂ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਈ, ਅੱਗੇ ਸਭ ਆਪੇ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਈ, ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫਿਟਕੀਏ ਸੱਚ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਸਿਰ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਏ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਪਾਵਾਂ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਏ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਸੇ ਹੋਮੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਪੌੜੀ ਜਿਤਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਉਮਰਾਵ ਸਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਿਤਨੇ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਰ ਕਰਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਰਥੀਏ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਵਰਨ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਗੋਲੇ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨ ਕੋ ਦੀਏ, ਹਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਐ ਹਰ ਸੇਵੀ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸੰਤੋ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਸਭ ਮਾਰ ਕਢਈਐ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਆ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉੱਪਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਰੱਖ ਲਈਐ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਮਾਵਨੀ ਦੁੱਖ ਵਰਤੇ ਦੁੱਖ ਆਗੇ, ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਅੰਤਰੋਂ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਤਿਮਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਚੁਕਾਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਰੇ ਗਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ, ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਜਨ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਹੋਮੇ ਮਲ ਜਾਈ, ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ ਸਿਰ ਤੰਦਾ ਨਿਤ ਮਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸੁੱਤੇ ਕਬੂ ਨ ਜਾਗੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ, ਪੌੜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਭਗਤ ਸੱਚ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸਵਰ ਰਾਸ ਲੈ ਵੇ ਮੁਖ ਰਸ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਜਮ ਜਗਾਤੀ, ਤਿਨਾ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਤਨ ਲੱਦਿਆ ਸਦਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਹੋਰ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰਮ ਪਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਅੰਧ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਿਖਿਆ ਮਾਏ ਉਦਾਸ ਹੈ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ,
ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਲ ਉਦਰੇ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਇਆ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦਿਓ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੁੱਲੇ ਹੋਮੇ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਪੰਡਤ ਪੜ ਪੜ ਮੋਨੀ ਪੁੱਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੁੱਲੇ ਵਿਣ ਗੁਰ ਧਾਤਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਏ ਸਦਾ ਭਰਮ ਪੁੱਲੇ ਤਿਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਜਨ ਸੰਤੇ ਜੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਆ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਸੋਸ ਲਾਈਐ ਜਿਸ ਵਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤਿਸੇ ਸਰੇ ਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਵਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨ ਖੱਟਿਓ ਸੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੇ ਸਭ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੋਹ ਥੁੱਕ ਨਾ ਤਿਨਕੋ ਪਾਏ ਪਰਾਈ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੋਵਨ ਸਿਗਵਾ ਵੀ ਆਪ ਲਿਖਾਏ ਜਿਸ ਤਨ ਕਾਰਨ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਸੋ ਤਨ ਚੁਗਲੀ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ ਓਏ ਭਾਵੇ ਤਿਸੇ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਹਰ ਤਨ ਮਿਲੇ ਤਿੱਥੋਂ ਕਰਮਹੀਨ ਲੈ ਸਕੇ ਹੋਰ ਨ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਤਰ ਹਰ ਤਨ ਆਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਸੁਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕਾ ਆਖਿਆ ਆਪ ਸੁਣੇ ਜੇ ਲੈਣ ਪੰਨੇ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਲ ਮਾਰ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਣੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਓ ਆਂਦਨ ਜਾਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਵੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਓ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਂਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਸੋਹੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਹਰ ਤਨ ਰਤਨ ਜਵੇਰੀ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤਨ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਮੰਗ ਲਏ ਅੱਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵਾਏ ਇਹੋ ਹਰ ਤਨ ਜੋਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਵੰਡਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਤਿਸ ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹੱਥ ਆਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਤੇ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਇਸ ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰੀਕ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾ ਖਤ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸੀਬ ਬੰਨੇ ਰੋਲ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋ ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾ ਮੂੰਹ ਹਰ ਚੌਂਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੋਰ ਬਖੀਲੀ ਨਾ ਚੱਲਈ ਦੈ ਦਿਸ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸੁਆਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲਿਓ ਉਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਔਰ ਨਾ ਸੁਝਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾ ਏ ਮਾਰੀ

दिखलाया, भागिन मनमुख ने लिया, त्रि ओले लक्ष पाया। मस्तक भाग होवै तुर लिखया, ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जहर पावै, धन धन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा। हर निकी कथा सुनाए, दुर्मता मैल गई साब निकला। सतसंगत मिल बुद पाए, राम जान गुरमत राम बलाए। जो जो सुने कहे सो मुक्ता, राम जपत सुहाए रहाओ। जे वड भाग होवे मुख मस्तक, हर राम ना राम जना पटाए। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दा दुख लै जाए। हर के लोग राम जन निकै, भाग हीन न सिखाए। ज्यो ज्यो राम कहे जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक, जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सिखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जन गुर की पैज न पाए, दया दया कर राखो हर जियो। हम दीन तेरी शरण आए, हम बारक तुम पिता ब्रह्म मेरे। जा नानक बख्श मलाए, राम कली महला चौथा। हर के सखा सा जा निके, तिन ऊपर हाथ बतावै। गुरमुख सार से ही प्राव, पाए कर कृपा आप मलावै। मोको राम मोको हर जन मेल मला, मन पावै। अम्यो अम्यो हर रचै मीटा, मिल संत जना मुख पावै। रहाओ हर के लोग राम जाना, उत्तम मिल उत्तम पदमी पावै। हम होवत चेरी दास दर्शन की, मिल ठाकर खुशी करावै। सेवक जन सेवे सेवड़ भागी, रद मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करे बहु बाता, कूड़ बोर कूड़ो फल पावै। मोको तार कृपा जगीवन दाते, हर संत बगीले पावे। हो काटो काट बाट सिर राखो, जेत नानक संत चढ़ आवै। राम कली महला चौथा, जेवड़ भागो वै वड मेरे। जन मिलदा ढिन न लाइए, हर जन अमृत कुंड सरनी। केवट भागी नित नवाइये, राम को हर जन कारे लाइये। हो पानी पखा पी सो हंत आगे, पग मल मल धूर मुख लाइये। राव हर जन कै हर जन, वड्डे वड्डे वड ऊचे। जो सतगुर मेल मलाइये सतजोग, सतगुर जेवड अवर ना कोई। मिल सतगुर पुरख ते आइये, सतगुर शरण परे। तिन पाया मेरे ठाकर लाज रखाइए। एक अपने सवाए आए, वह गुर आगे जो उगल समाध लगाइए। उगला का नीच की संगता, जाय करुंग भिखू मुख लाइए। नानक मेर मेल प्रव संगता, मिल संगत हंस कराइए। राम कली महला चौथा, सतगुर दया करो हर मेलो। मेरे प्रीतम प्राण हर राय, या हम चेरी होए लगे गुर चरनी। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया। मैं हर बिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया। राव मेरे एक खिन प्राण न रहे, बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुर सरनी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे, मन हर जप जप पाया। नामहीन फिरे से नटकै, तिन कस कस नक वढाया। मोको जीवन जगवा ज्वाला स्वामी, रिदा अंतर नाम वसाया। नान गुरु गुरु है पूरा, मेरे सतगुर नाम ते आया। राम करी महला चौथा, सतजुग सतगुर दाता वड्डा। वड पुरख है जित मिली हर उड़तारे जीवन। जी दान गुरपुरे दिया, हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम, कंठ धारे गुरमुख। कथा सुनी मन भाई, धन धन वड भाग हमारे। राव कोट कोट ते सीत्यावे, ता का अंत न पावे। पारे हिरदे कम कामनी, मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जप हर जप जप जप वडा वडेरा, गुरमुख को अवतारे। जे वड भागवे ता जपी, हर भवजर पार उतारे। हर जन निकट निट हर जन कह, हर राखे कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारक हर प्रित पारे। राग राम कली महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न बिचारो कोई। माटी का क्या तुमे तोपे स्वामी, मानस की गत ही। मेरे मन सतगुर सेव सुखोई, जो इच्छो छो ही फल पावो। फिर दुख न व्यापे कोई, रहाओ।
ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ

ज्ञान तृप्ता नहीं थी। जय मनमुख जन में जन्म मरी जय। सतगुरु पूज संगत जन की जय। हर मन हर राचे नहीं जन्म मरी जय। राम नाम बिन क्या कर्म की जय। उदर दूदर पास त्रि जय तुरकी छे बा राम रविजय। नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला। अंतर उत्पज अवर न कोई। जो कहिए छो प्राप्ते होई। जुगा जगंतर सैब सा छोई। ओपत परलो अवर न कोई। ऐसा मेरा साकर गैरंग भीरा। जन जपया तिनी सुख पाया। हर के नाम न लगे जम तीर। राव नाम रतन हीरा निर्मोल। साचा सैब अमर अतोल। जेवा सूची साचा बोल। घर दर साचा ना ही रोला। इक बाना मैं बैसे डूंगर अस्तान। ना बिसार पचे अभिमान। ना बिना क्या ज्ञान ध्यान। गुरमह पावे दरगे मान। हठ हंकार करे ने पावे। पाठ पढ़े लै लोक सुनावे। तीर्थ परमा परमाए ब्याद न जाए। तीर्थ परमस ब्याद न जावे। ना बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद केवे न रहाई। मनमा डोले नर के पाई। जा पुरबा डोले सजाई। बिन नावे जो जल बल जाई। सिद्ध साध के ते मुन देवा। हट गया ना तर पावे पेवा। शब्द विचार गहे गुर सेवा। मन तर निर्मल अवान अभमान अपेवा। कर्म मिले पावे सचनाओ। तुम शरणागत रहो सुभाओ। तुम ते उपज भक्ति पाओ। जप जापो गुरमुख हर नाओ। होमे गर्भ जाए मन पीने। झूठ न पाव सुपखंड कीने। बिन गौर शब्द नहीं कर बार। नान गुरमुख तत् विचार। राम कली महला पहला। जो आया तू जावे बौरे। जो जन्मे तू मरन पया। जो रस भोग किए तेता दुख लागे। नाम विसार पवजल पया। तन धन देखता गर्भ गया। कनका निचो हित वधावे। की नाम विसारे परम गया रहाओ। जत सत संजम शील न राख्या। प्रेत पिंजर में काष्ट पे। आपुन दान स्नान संजम साध संगत बिन बाद जया। लाल चला के नाम विसार्यो। आवत जात जन्म गया। जान जम ताए केस गए मारे। सुरत नहीं मुख काल गया। अनच निंदा तात पराई। हृदय नाम न सर्ब दया। बिन गुर शब्द न गत मित पावे। राम ना बिन नरक गया। खिन में वेश करे नटुआ। जो मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख बसारी। मोह माया कै मगन प्या। करे बकार बिथार नेरे। सुरत शब्द बिन परम गया। परम प्या हो मे रोग महा दुख लागा। गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखे। सागत मन अवमान प्या। जिसका इहो तन धन सो फिर लेवे। अंत सहसा दुख पया। अंत काल के साथ न चाले। जो दिशे सब तिशे मया। आदि पुरख अपरंपर सो प्रभु। हर नाम हृदय लय पार पया। मुए को रोवे के सुनावे। पैसा अशराल पया। देख कुटा माया ग्रह मंदर सागत जंजाल पराल पया। जा आए ता तिने पठाए। चाले तिने बुलाए लिया। जो किस करना सो कर रहा। बख्शन हरे बख्श लिया। जिन इहो चाख्या राम रसायण। तिनके संगत खोज पया। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया। मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना। हर सोग ते बिरकत पया। आ मार गुरमुख हर पाए। नानक सहज समाए लिया। राम कली दखणी महला पहला। जत सत संजम साच दड़ाया। साच शब्द रस लीना। मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना। आनस रहे एक लिवलागी। साचे देख पतीना रहाओ। रहे गगन पुर दृष्ट दृसट समसर। अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपी कपीन पर भूलीना। जिहवा रंग रसीना। मिले मिले गोर साचे जिन रच राचे। किरत विचार पतीना। एक मह सर्व शर्म एका। एह सतगुर देख दगाई। जिन की ये खंड मंडल ब्रह्मंडा। सोप्रभ लखन न जाई। दीपक ते दीप रगास्या। तृपण जोत दिखाई। सच्चे तख्त सतमैली बैठे। निरपो ताड़ी लाई।
ਮੋਹ ਗਿਆ ਬਿਰਾਗੀ ਜੋਗੀ, ਘਟ ਕਰ ਗਰੀਬ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਰਨ।